0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: Have you heard? Census 2027 house listing operation has begun in Nagaland. These are informations to be collected.
2: Basic household amenities such as drinking water, LPG, electricity, sanitation and other essential facilities.
1: When the census officials visit your home, kindly provide accurate information and extend your full cooperation.
2: Your cooperation matters. Our census, our development.

0: मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरे आज नौसेना में शामिल होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की, मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कार्य समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
2: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
4: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। यह हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
2: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
4: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
2: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
5: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
6: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। हमारे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर व्यापारिक जोन है, हमारे आईलैंड टेरिटरी है और यह जो रीजन है और आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, जो स्वयं आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
2: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुस जलडमरु मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं, वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार।
4: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वीं मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज्य की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर एक विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट एक रन बनाकर क्रीज पर थी। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा, सरकार ने कहा हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेस्सी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नुस्कोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। India and New Zealand signed 5 MOUs in key areas including defense, disaster management and animal husbandry to boost economic and strategic cooperation. Prime Minister Narendra Modi holds delegation level talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon in Auckland, says India and New Zealand can play important role in strengthening peace and security in Indo-Pacific region. Indian Navy to commission indigenous stealth frigate Mahendragiri in Vishakhapatnam today. Home Minister Amit Shah reviews progress in rollout of Bureau of Port Security, directs stronger coastal security measures. In FIFA World Cup, Spain books spot in semi-finals, defeating Belgium 2-1, Norway to face England in third quarter-final tonight. And in Wimbledon tennis, Czechia Karolina Muchová to face compatriot Linda Noskova in women's singles final today. And now the news in detail. India and New Zealand today signed 5 key memorandums of understanding, MOUs, covering defence, animal husbandry and dairy, tourism, sports and disaster management, marking a new chapter in bilateral ties between the two nations. The deals were inked following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart, Christopher Luxon, in Auckland. We have more from our correspondent.
7: The two countries signed a memorandum of arrangement between the Ministry of Defence and the New Zealand Defence Force to enhance maritime cooperation aimed at strengthening security in the Indo-Pacific region. The agreement on animal husbandry and dairy will promote research, innovation and exchange of best practices. The tourism pact is expected to boost visitor exchanges and strengthen cooperation in the travel sector. Both sides also adopted a joint action plan on sport to deepen collaboration in sports development and athlete exchanges. An MOU on disaster management will enhance cooperation in disaster preparedness, emergency response and resilience. The 5 agreements reflect the growing India-New Zealand partnership and the shared commitment to expand cooperation across strategic, economic and people-to-people sectors. With Manju Meena's report from Auckland, this is Jigyasa Pandey for Akashwani News.
6: Earlier, speaking during delegation-level talks, Prime Minister Modi said that his visit to New Zealand marks a historic milestone in bilateral relations and will give a fresh momentum to ties between the two countries. Prime Minister Modi said India and New Zealand can play an important role in strengthening peace, stability and security in the Indo-Pacific region.
8: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
6: Speaking on the occasion, the New Zealand Prime Minister described Mr. Modi's visit as a historic milestone, marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. Welcoming Prime Minister Modi, Mr. Luxon said, "It was a pleasure and an honour to host him," adding that the visit reflects the growing strength of bilateral ties.
9: This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity, and I'm therefore delighted to welcome you here. Thank you for the relationship and thank you for what you've put into it personally. I think we've made tremendous progress in a very short period of time on the trade agenda, but today's focus is about more than just the FTA. It's about where we go to next in this relationship and how we broaden that out. Very proud to announce that we will be forming a strategic partnership which will give the relationship more framework and breadth for us to continue to expand as we go forward from here.
6: Prime Minister Modi and his New Zealand counterpart participated in the India-New Zealand Business Engagement 2026 event in Auckland, where both leaders reaffirmed their commitment to strengthening economic ties between the two countries. We have more from our correspondent covering the Prime Minister's visit.
10: Highlighting the growing economic partnership between the two countries, Prime Minister Narendra Modi said the free trade agreement was concluded in a record 9 months and expressed confidence that the bilateral trade would double by 2030. He welcomed New Zealand's target of investing $20 billion in India over the next 15 years, describing India as not only a market but a launchpad for global growth. The Prime Minister invited New Zealand businesses to invest in manufacturing, technology, agritech and innovation. He also proposed greater exchange of young business leaders under the age of 35 to strengthen future economic cooperation between the two countries. Manju Meena for Akashwani News, Auckland, New Zealand.
6: In a reflection of the strong people-to-people ties that exist between the two countries, Mr. Modi will address a large gathering of the Indian diaspora today. Prime Minister Modi arrived in Auckland yesterday on the third and final leg of his three-nation tour after concluding his successful visits to Australia and Indonesia. The Indian Navy is all set to commission its sixth project, 17A Indigenous Stealth Frigate Mahendragiri F-38, into its Eastern Fleet at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh today. The ceremony will be presided over by Defence Minister Rajnath Singh. It will mark another significant milestone in India's journey towards defence self-reliance and indigenous warship construction. Addressing the naval personnel in Vishakhapatnam during Bada Khana on the eve of the commissioning ceremony, the Defence Minister reaffirmed India's stand as the primary guarantor of peace and stability in the Indian Ocean region. We have more from our correspondent.
11: Designed by the Indian Navy's Warship Design Bureau and built by Mezagon Dockship Builders Limited in Mumbai, Mahendragiri is a state-of-the-art stealth frigate equipped with advanced weapons, sensors and electronic warfare systems. The warship is capable of undertaking anti-air, anti-surface and anti-submarine operations. It can also carry out maritime security protocols, search and rescue missions, humanitarian assistance and disaster relief operations and sustained deployments in the Indian Ocean region. With over 75% indigenous content, the frigate reflects the government's push for self-reliance in defense manufacturing under the Atmanirbhar Bharat initiative. The government says its induction will further enhance the Indian Navy's operational capability and reinforce India's position as a leading indigenous warship building nation. Allu Murli, Akashwani News, Vishakhapatnam.
6: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Union Home Minister Amit Shah has said the government is firmly committed to making the country's coastal security unbreachable. Mr. Shah made the remarks while reviewing the progress made in the establishment of the Bureau of Port Security, along with Union Minister for Ports, Shipping and Waterways Sarbanand Sonowal. The Home Minister said only licensed private security agencies should be entrusted with port security and only personnel trained by the Central Industrial Security Force or CISF should be deployed. He directed that training at the Port Security Training Institute should begin at the earliest by utilizing the existing infrastructure. A report.
2: The Bureau of Port Security is being established as a statutory body under Section 13 of the Merchant Shipping Act 2025. To be headed by a Director General, the Bureau will function under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. It will be responsible for regulating and inspecting the security of ships and port facilities. The Bureau will also ensure the timely collection, analysis and sharing of security-related information with a special focus on cybersecurity. A dedicated division will safeguard the IT infrastructure of ports against cyber threats. With Anupam Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
6: The Ministry of Coal has opened the bids for the 15th round of the commercial coal blocks auction, conducted along with the second attempt of the 13th and 14th tranches. The Ministry said that a total of 21 bids were received for 8 of the 23 coal blocks offered in these rounds, reflecting strong industry participation in India's commercial coal mining framework. A total of 16 companies participated in the auction around. U.S. President Donald Trump has said Washington and Tehran have agreed to continue talks despite a recent escalation of hostilities, but he firmly declared that the ceasefire reached between the two sides last month was over. President Trump, in a social media post, said Iran has asked to continue talks and the U.S. agreed to do so. The United States also stepped up demands that Iran stop attacks on ships in the Strait of Hormuz, where recent hostilities have pushed oil prices higher. The death toll in Venezuela's devastating twin earthquakes has crossed 4,000. Venezuelan Parliament Chief Jorge Rodriguez wrote on social media platform that at least 4,118 people were killed and 16,740 were injured in back-to-back 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes, which hit the South American country on the 24th of June, flattening entire districts in the coastal state of La Guajira. Thousands more are listed as missing. Back home, the India Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for very heavy rainfall over Bihar, Uttar Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 3 days. The weather agency has forecast very heavy rainfall condition over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Arunachal Pradesh, Gangetic West Bengal, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Ladakh and Jammu and Kashmir during the next 5 days. In Delhi, IMD predicted very light to light rainfall condition accompanied with thunderstorm and lightning during the day. In the FIFA World Cup, Spain has booked its place in the semi-finals, defeating Belgium 2-1 in the second quarter-final at Los Angeles Stadium in Inglewood, United States last night. Earlier, France advanced to the semi-finals with a comfortable 2-0 victory over Morocco in the first quarter-final in Boston. In the remaining quarter-finals, Norway will face England at Miami Gardens tonight. The match will begin at 2:30 a.m. Indian Standard Time. Defending champions Argentina will take on Switzerland in the fourth quarterfinal at Kansas City tomorrow. In Wimbledon tennis, Czechia Karolina Muchova will face compatriot Linda Noskova in the women's singles final in London today. Both players are chasing their maiden Wimbledon crown. Muchova, who will be appearing in her first Wimbledon final, will rely on her all-court game and experience, while the hard-hitting Noskova will be aiming to win her first Grand Slam title. 9 seed Noskova outclassed 12 seed Ukrainian Marta Kostyuk 6-4, 6-4, while 10 seed Muchova beat 7 seed American Coco Gauff 6-2, 1-6, 7-6 in the last four matches to reach the final. The stage is all set for men's singles final tomorrow, where world number 1 Yannick Sinner will face Germany's Alexander Zverev. And in women's cricket, England will resume their first inning play at the overnight score of 21 for 1 on day 2 of inaugural women's test at Lord's in London today, in reply to India's total of 285. The play is scheduled to commence at 3:30 p.m. Indian Standard Time. On the opening day, England batted for 11 overs in the final session before stumps were drawn. And now for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
12: Thank you, Anuja. All the dailies have covered the Prime Minister's visit to Australia and New Zealand. The dailies have also mentioned the announcement of cricket diplomacy with Australia. The Times of India writes, "Good day, Chennai. Australia's Big Bash League opener to be held in Tamil Nadu this December, becoming the first instance of a foreign cricket league playing in India." The dailies have also mentioned the Prime Minister's historic visit to New Zealand on first bilateral visit in 40 years, focusing on trade and eco-links. Kerala birth rate has reached an all-time low, states the Indian Express, dropping into single digit for the first time. A Sena team planned Bangladesh return in December, willing to face arrest or even death, states the Tribune. And finally, the Statesman cites a major milestone for breed conservation and preservation of two Himalayan Gaddi dogs who are integral to the culture and pastoral heritage of the Western Himalayas, getting official Kennel Club recognition. And with that, it's back to you, Anuja.
6: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and New Zealand signed 5 MOUs in key areas including defence, disaster management and animal husbandry to boost economic and strategic cooperation. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon in Auckland, says India and New Zealand can play important role in strengthening peace and security in Indo-Pacific region. Indian Navy to commission indigenous stealth frigate Mahendragiri in Vishakhapatnam today. Home Minister Amit Shah reviews progress in rollout of Bureau of Port Security, directs stronger coastal security measures. In FIFA World Cup, Spain books spot in semi-finals, defeating Belgium 2-1. Norway to face England in third quarter-final tonight. And in Wimbledon tennis, Czechia Karolina Muchova to face compatriot Linda Noskova in women's singles final today. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in. And with that, we end the morning news. Have a nice day.

वेल लिसनर्स कन अपनी खेल का मैसेज कन आई गिना से सो मोय मैसेज पहला पूरी दिया से तो लिखी गिना पता है से गुड मॉर्निंग सर को गिना लिखिया से और तो लिखी गिना पता है से विक्की फ्रॉम डी ब्लॉक कोहिमा. वेल थैंक यू सो मच विक्की एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग अपनी खन की भी अपनी की भी और यद लिखिया से गुड मॉर्निंग आर जे प्ले लिस्ट तो बेसि भल लगी आसे शुनी किना एन्जॉय कर सो कहना लिखी आसे चंद्र तिमुंग राजेश तेरण और रेबिका तिमुंगी सरहिजान कार्बियन लंग आसामपरा. वेल थैंक यू सो मच लिखी किना पठाई दिया कारण अपनी खान ट्यून करते जानी बेसि खुशी आसे और ये लिखी किना पता है गुड मॉर्निंग आर जे जेकब ड्यू टू वर्ल्ड कप पीपल स्लीपिंग टाइम चेंज इन ऑर्डर टू वाच फुटबॉल मैच दे टाइम sleeping and night time watching. What about you from Rokoville Meta 4 mile depo par chumuke dima bara likhi ase. Well Rokoville interest thake khan tu jilu inka sawol ase even it's late night te hoile they can sawo, but those who are not interested I don't think they will spoil their sleep takhan la gumala timing to bia nokri wala, but anyway most of the people are watching takhan so peace hai ase bishi bhag manu khan tu aro itu timing to ekdam odd timing ekta ase will be still then people are watching moi ki hudia ni what about you ko ase but see moi sawule tu mon moi interest to ase kintu having duty in the morning it's very risky to watch the match because saikena ko uthiwa na pare tu bishi dangor kotha hoi jai tu gane itu tu moi bi sai thake but anyway highlights saikena bi मतलब तो घूरब पारे आई मीन सेटिस्फेक्शन एक पाई जाए तो एनीवे कुम्भ खान तो लाइव मेच सारे इंटरेस्ट पाए कि मैं इन्हें ड्यूटी थी गलो तो हाईलाइट हो सीना मन तो खुशी कर लिना अपनी के जाना दी से सो थैंक यू सो माच फॉर योर मेसेज रखोविले another message likhi gina patha ase te hello fm tragopan family and listeners very good morning and have a beautiful saturday ko gina romesh patro runu patro and lucky golakat assam bra likhi gina patha ase well thank you so much romesh patro and family apni gan kimi my wish kori ase have a wonderful saturday ko gina aro yate ko likhi ase hi it's me kekrileto from kohima good morning sir I am also enjoying your song ko ise well thank you so much kekrileto apni bhi shamil ase ko ta jani na beshi khushi ase well apni khan listeners khan na thaile tu me khan bhi yare kana play ko thakil bhi it doesn't make any sense etu karne apni khan listeners khan thaka karne me khan bhi khushi paige na apni khan karne yate gana khan bajai dine apni khan ke entertain kori thaki ase so थैंक यू सो माच कखिले तो अपनी लिखी गिना पठाई दिया कारण और ये लिखी आज बुगाजान परा सुनीता बसुमतरी हेलो माई डियर मिस्टी सर जी केनेका आसे अपनी भाल हबला कहना लिखी आज गुड मॉर्निंग मैं ड्यूटी करना शुनी आसो गाना तो वो आसे अपनी निचिना ओके बाय सर जी कैसे वेल थैंक यू सो माच सुनीता अपनी भी भल ड्यूटी करना गाना भी भल शुनिबी और कह दिया निचिना पासते आको 11:30 पर मैं अपनी हेन सब कि आको इतना कह दी आज देट इज 11:30 पर तो लाइव फोन इन प्रोग्राम आज हिंदी फिल्म लगा अपनी हेन टाइम तो भी फोन कर पे फोन करना मैं अपनी हेन कि पसंद गाना लगे ये गान मैं कहना मैं अपनी खान कारण बजा दिया हम और नम्बर तो आज 0370-224-3036 नम्बर एनेक करना अपनी खान पसंद लगे गाना तो मांगी मैं अपनी खान फोन कल तो रिसीव करना अपनी खान कथा बतरा भी करब तार पाजते अपनी खान एक गाना भी शुनबा मैं अपनी खान के जाना दी आज यस जो अभी सुन रहा है प्रोग्राम आप लोग सभी लोगों के लिए ये एक जानकारी है कि 11:30 में लाइव फोन इन प्रोग्राम का कार्यक्रम होगा उस टाइम में आप लोग फ़ोन कर सकते हैं हमको 0370-224-3036 इस नंबर पे डायल कीजिए और आप लोग का पसंदीदा गाना हमको बोल दीजिए हम आप लोगों के लिए बजा देता हूँ वेल लेकिन आगे से आप लोग पूरा तैयार करके रखना क्योंकि जो गाना सुनना है वो समय के लिए समय नहीं जाने के लिए समय वेस्ट नहीं होने के लिए आगे से धुन के रख लेना जो खान ये लाइव फोन इन प्रोग्राम से भाग लोले से अपनी मरम पर पीछे से गाना आगे पर भाभी के राखी लुबी कि गाना शुनबले मन आने मैं अपनी खान कारण बजा दिया हम
Well, ete akou ek ta mesej ase, ete likhi ase, Jack, koyen na likhi ase, from Tesepinho. Good morning, sir. Enjoying your playlist ko ase. Well, Jack, thank you so much. Apni likhi gina pathai diya karne, aitu nishina. This is my first time that I'm reading out your message, Jack. Itu nishina FM Tragopan tu huni thakibi, aro FM Tragopan lote, Jurigina Thagibi, Aru Apnihan Sop Kimwe, Wish Kriya Se, once again, good morning Kwegina. To next Kanaku Hunibo Mohit Chauhan Laka was the se, feeling of se, notebook, Git Likyao Se, Kaushal Kishore, Aru Music Dio Se, Vishal Mishra.

0: हेलो
1: जी नमस्ते। प्रेम
0: नमस्ते। ओके
1: सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से। जी
0: प्रेम सिंह जी, बताइए कैसा है हालचाल।
1: बहुत ही अच्छे हाल चाल है, आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है। जी
0: ओके तो
1: काफी तेज हवाएं चल रही है यहाँ पर। हाँ जी,
0: ओके, काफी तेज हवा चल रहा है। ओके
1: तो
0: तो ठंडा होगा।
1: हाँ मौसम काफी ठंडा हो चुका है, सोयाबीन की फसल लगाई है, बरसात हो गई है।
0: ओके
1: जी
0: तो ठीक है।
1: ऐसे मौसम में सुनना चाहेंगे मुझसे शादी करोगी फिल्म का लाल दुपट्टा उड़ गया हवा के झोंके से। जी
0: ओके, मुझसे शादी करोगी ना।
1: हाँ, काफी अच्छा गाना है सर ये, कई बार बजा चुके हैं और बहुत ही अच्छा लगता है बार बार सुनने में।
0: कौन से गाना बोला?
1: जी लाल दुपट्टा उड़ गया हवा के झोंके से, मुझसे शादी करोगी फिल्म का।
0: लाल दुपट्टा ना। ओके ओके ठीक है ठीक है। हाँ बजा देगा।
1: अभी
0: तो
1: कैसा मौसम है आपके उधर? अच्छा
0: मौसम अभी बारिश हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है। यहाँ भी बारिश तो
1: जी।
0: नहीं छुट्टा है, बारिश तो हर दिन
1: हाँ
0: बारिश हो रहा है अभी।
1: जी, यहाँ पे तो मतलब 2-4 दिन से अभी बंद है बारिश, लेकिन
0: ओके
1: पिछले हफ्ते काफी तेज बारिश हुई थी। जी
0: ओके ठीक है ठीक है।
1: सर, डेडिकेट करना चाहेंगे सॉन्ग हम,
0: ओके करिए जी।
1: भाईकोन मुंडा है असम से, विमल
0: ओके ओके
1: अमल और रमेश पात्रो है, और ये आसाम के श्रोता है हमारे। त्रिपुरा से आशुतोष अविनय संगीता जी, भगवान सिंह परमार, लोकेंद्र वर्मा, आशुतोष जी, ये मध्य प्रदेश के रमेश चलल और सुनील झा भोपाल से हैं।
0: ठीक है, बहुत बहुत
1: जी
0: धन्यवाद। ओके
1: ओके जी, और मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। मोबाइल ऐप पर मैं आपके कार्यक्रम सुनता हूँ सर।
0: ओके थैंक यू बहुत बहुत
1: हाँ जी, एक और
0: धन्यवाद।
1: हमारे दोस्त बोल रहे हैं, तनुश्री है महाराष्ट्र सतारा से। जी
0: ओके ठीक है, तब तो सुन के आनंद लीजिए गीत का। ओके थैंक
1: थैंक यू सो मच सर।
0: यू थैंक यू। वेल लिसनर्स का नाकू हुनी वो अपनों के उदित नारायण और अलका याग्निक लगा वास्ते फिल्म से मुझसे शादी करोगी।

0: हेलो।
1: हेलो सर
0: हाँ हेलो।
1: जी को राधे राधे।
0: राधे राधे।
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ सर, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से। जी
0: ओके, केसरी सिंह ना।
1: जी
0: ओके, आज कौन से गाना सुनना है केसरी सिंह?
1: आज सुनवा दीजिएगा सर आप, तो तेरी मेहरबानियां मिल जाएगा।
0: तेरे मेहरबानी,
1: मेहरबानियां
0: तेरे मेहर, तेरी ना, तेरी
1: हाँ
0: तेरी मेहर। हाँ, तेरे मेहरबानियाँ है। कौन से गाना सुनना है इसमें से?
1: उसमें है थोड़ा सा गाना साथ ही, खुश दिल बेकरार था, दिल
0: ओके, कुमार
1: बेकरार है।
0: शानू और अनुराधा पटवाल का ना।
1: जी
0: ओके, बजा देगा।
1: और सर आपके इधर कैसा मौसम
0: मौसम अभी थोड़ा बारिश हो रहा है।
1: है? बारिश ही यहाँ चल रहा था। गजराज
0: ओके ओके ओके।
1: लोधी जी सुनेंगे, आप सुनेंगे, भगवान सिंह परमार जी, राम बाबू शर्मा जी, प्रेम
0: ओके
1: सिंह सिसोदिया जी, रमेश प्रजापति जी, अविनाथ जी, आशुतोष जी, संगीता देवनाथ जी, अमल जी, विमल जी और भाईकुंड मुंडा।
0: ओके, ठीक है। तो गाना तो बहुत लंबा है, इसलिए मैं थोड़ा तो काटना पड़ेगा। ओके
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप तो
0: ओके
1: शॉर्ट सुना देंगे, शॉर्ट
0: ओके,
1: सुना दीजिएगा जी।
0: ठीक है ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके राधे राधे।
0: ओके, राधे राधे। वेल, प्रोग्राम तो यकू हुनी वो अपन लोग के शबीर कुमार और अनुराधा पटवाल लगा वास्ते फिल्म से तेरी मेहरबानियां।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: ओके राकेश
1: जी,
0: जी, कौन से फिल्म का सुनना है आज?
1: आज मुझे गाना सुनना है। फिल्म का नाम है मन। जी
0: मन। मन मन में तो एक थू गाना है सिर्फ, नशा ये प्यार का।
1: अच्छा, तो ये है तो मैं आपको दूसरा फिल्म बताऊँ फटाफट। और क्या दिल का क्या कसूर है? दिल का क्या कसूर?
0: दिल का क्या कसूर?
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: ये तो नहीं है फिल्म।
1: अच्छा, ये नहीं है तो मुझे फिर कोई मेरे दिल में है इसका टाइटल सॉन्ग सुना दो। कोई
0: कोई मेरे दिल में है,
1: जी,
0: अच्छा
1: जी जी
0: टाइटल सॉन्ग ना,
1: जी टाइटल सॉन्ग
0: ठीक है बजा देगा। ओके बहुत
1: उनमें
0: लंबा है तो
1: तो
0: खत्ता करना पड़ेगा। हाँ
1: बिल्कुल। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई दिक्कत
0: ओके
1: नहीं,
0: हाँ
1: क्योंकि गाना कम, क्योंकि और भी श्रोता जुड़ जाएंगे। हाँ,
0: ठीक है ठीक है।
1: तो फिर सबसे पहले तो ये गाना आपको डेडिकेट रहेगा।
0: ओके
1: तो पूरन वर्मा, अविनाश तेली और प्रजापति भगवान सिंह परमार, और महाराष्ट्र सितारा से हैं तनुश्री, और रुकुमिल्ला मिठा, और अमल भस्माचार्य, विमल भस्माचार्य, और तमाम सुनने वाले श्रोता भगवान सिंह परमार के साथ, सभी के साथ, और प्रेम सिंह सिसोदिया और तमाम सुनने वाले साथ, सबके साथ ये गाना सुनना चाहूंगा और आपकी डेडिकेट रहेगा।
0: ओके तो ठीक है, धन्यवाद। तो ये सुन लीजिए गाना। ओके
1: ओके ओके, धन्यवाद।
0: और धन्यवाद। वेल लिसनर्स का नकु होनी वो इतिया अनुराधा पटवाल और कुमार शानू लकावास्ते फिल्म से कोई मेरे दिल में है।

0: हेलो।
1: हेलो सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मैं रमेश प्रजापति, ग्राम माया, तहसील जिला सीहोर, एमपी से बोल रहा हूँ सर जी। गंगा
0: ओके रमेश जी, बताइए आज कौन सी फिल्म का सुनना है?
1: जमुना,
0: गंगा जमुना।
1: हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे।
0: ओके गंगा जमुना, इंसाफ की डगर पे गाना तो एक ही है हम लोग, गंगा जमुना।
1: दो दो अंशों का जोड़ा बिछड़ गया है, ये गाना है कि नहीं उसमें?
0: नहीं है इसलिए, गंगा जमुना का तो एक ही गाना है सिर्फ, इंसाफ की,
1: कौन सा?
0: इंसाफ की डगर पे।
1: अच्छा, और जीने की राह है क्या?
0: नहीं नहीं है इसलिए, एक ही गाना है इस फिल्म का ये।
1: नहीं, दूसरी फिल्म बता दो क्या?
0: हाँ बता दो थोड़ा फटाफट। ओके
1: पाकी क्या? पाकी क्या?
0: फकीजा,
1: हाँ
0: फकीजा, फकीजा तो नहीं है,
1: मिलो सजना।
0: अनमिलो सजना ना, अनमिलो, हाँ अनमिलो सजना है।
1: अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलेंगे? जुमे
0: हाँ
1: रात को, आधी रात को?
0: हाँ ठीक है बजा देगा।
1: कुछ मित्रों को याद कर लूं?
0: ओके मित्रों को याद कर लीजिए।
1: पहले तो आपको याद करता हूँ।
0: ओके थैंक यू।
1: भगवान सिंह परमार, पूरन वर्मा जी है, गजराज लोधी जी, कृष्ण सिंह राजपूत है, माहिला चंदेल है, प्रेम सिंह सिसोदिया है, लोकन वर्मा उज्जैन से, आशुतोष जी है, संगीता जी है, पूनम जी है कानपुर से, अभिलाष जी है, राकेश जी है शिमला से, बीसी शिवा है विदिशा से, और विमल भाई है, अमल भाई है, गोल्डी जी है, और राकेश पात्रे जी है, और रक्कू विले मेहता, और श्री तनु श्री बिटिया महाराष्ट्र से
0: ओके धन्यवाद।
1: जी। धन्यवाद।
0: ओके वेल लिसनर्स खान इतना हूँ आप लोग के लता मंगेशकर और किशोर कुमार लगा वास्ते फिल्म से अन मिलो सजना।
2: अच्छा तो हम चलते हैं।

0: फरियाद।
1: हेलो।
2: हेलो सर, नमस्कार।
1: हाँ नमस्कार नमस्कार।
2: जी सर, हम धेमाजी असम से बिमल सुंदर बोल रहा
1: ओके बिमल जी, बताइए आज कौन सी फिल्म का सुनना है?
2: हूँ। जी सर, हमको सुनना है अनारी फिल्म का, बम से आकर बम के ये गाना।
1: अनारी।
2: जी,
1: अनारी ओके। कौन से गाना बोला?
2: बम से आकर बम ये गाना है ना सर। हाँ
1: बम से आकर बम, बन के पंछी,
2: हाँ हाँ
1: बन के पंछी ना। ओके ओके ठीक है, बजा देगा।
2: जी। सर हम धेमाजी असम से, सर हम दोस्त के लिए दिल्ली से करना चाहते हैं
1: ओके डेडिकेट कर लो।
2: सर। हम लोग का है अमोल बसुमतारी है, फैशन निंदा है,
1: ओके
2: और रमेश पत्रो है, और है हितेंद्र दास, रुखबिला मिठा, जोगेंद्र रोंगटी, रमेश प्रजापति, और है प्रेम सिंह सिसोदिया, राकेश गोल्डी, और
1: ओके
2: शिवा लोहार है।
1: हम्म।
2: जी, जितना लाइव सुन रहे सब के लिए डिलीकेट है, और अगर कोई रह गया तो सबको भी डिलीकेट है सर।
1: ओके ओके थैंक यू। हाँ बिमोल।
2: जी सर, जी सर, निंदा है।
1: वेल लिसनर्स का नीति होनी वो अपना लोके लता मंगेशकर और खरस लगा वास्ते फिल्म से अनारी।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, लीजिए सुनिए दोपहर एक बजे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में द्विपक्षीय

वार्ता हुई। दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों के बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित है। सिक्किम एक बार फिर देश के सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपये से अधिक रही। अमरीका में ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें ईरान के नेतृत्व से जुड़े व्यक्तियों और वित्तीय नेटवर्कों को निशाना बनाया गया है। और खेलों में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में एक विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

0: आकाशवाणी
1: आपकी वाणी आकाशवाणी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 1:03 लगभग होने जा रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ सोनू भट्ट। प्रोग्राम शुरू हो गया है। मेरा वाला सॉन्ग ये वही प्रोग्राम है जिसमें आपकी पसंद के गाने हम तक पहुंच रहे हैं। और जैसा कि अदिति ने बताया कि बहुत से मैसेजेस हैं जो कि समय से थोड़ा पहले ही पहुंचने लग गए हैं। और मुझे बताइए, एक्साइटमेंट बनी रहती है कि हमारी पसंद का गाना रेडियो पर चल जाए किसी तरह से, तो ये सभी में रहती है। ये अगर मैं माइक के इस तरफ ना होके उस तरफ होती, रेडियो सेट पर सुन रही होती, तो मैं भी यही सोच रही होती एक रिक्वेस्ट भेजने के बाद कि अब मेरा वाला गाना आएगा, अब मेरा वाला गाना आएगा। और ये होता है, ये बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है और ये होनी भी चाहिए। एक्साइटमेंट आपको जिंदा रखती है, ये एक्साइटमेंट, ये बच्चों जैसी किसी भी चीज़ को लेकर क्यूरियोसिटी और अपनी बारी का इंतज़ार, कितना अच्छा लगता है ना कि हमारी पसंद की चीज़ आने वाली है और उसका बेसब्री से इंतज़ार होता है। तो यही वो प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग। इसमें आप ज़रूर एक अच्छा ब्यूटीफुल सा गाना जो आपको लगता है कि आप सुनना चाहते हैं, किसी को सुनवाना भी चाहते हैं, एक अच्छे से मैसेज के साथ भी आप मुझे भेज सकते हैं। कोई पुरानी याद को ताज़ा करता हुआ आप अपनी रिक्वेस्ट को हम तक भेज सकते हैं। 9868107070 इज द नंबर, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और मैं पहले ही बता देती हूँ आपको कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बहुत सारी रिक्वेस्ट हम ले सकें और इन गानों को एयर कर सकें, लेकिन जो रह जाएंगे वो नाराज़ मत होइएगा। आप हर गाने के साथ इन्जॉय कीजिए क्योंकि हर गाने के लिरिक्स बहुत अच्छे होते हैं, हर सॉन्ग आपको कुछ ना कुछ सिखाई देता है। आपका मन का मैसेज ना पहुँचा, किसी और के मन का मैसेज पहुँच गया आप तक, कितनी बड़ी बात है ना। लेकिन पहला गाना तो मेरी तरफ से, ये मेरी पसंद का गाना। अब आपके गाने इन्वाइट करती हूँ मैं 9868107070 पर।

वजीर फिल्म से बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक मैंने आपको सुनवाया अमिताभ और फरहान की आवाज में, अमिताभ बच्चन साहब की बहुत ही ब्यूटीफुल इसमें आवाज थी। और आप जो आवाज सुनने जा रहे हैं उदित नारायण साहब की, ये फिल्म है राजा हिंदुस्तानी। अनुज राठी की आई है ये रिक्वेस्ट मेरठ से अपनी दोस्त पूजा के लिए, तो ये

वेल आई एम श्योर ये गाना आपको बहुत पसंद आएगा। उदित नारायण साहब की आवाज तो वैसे ही अपने आप में लाजवाब है। और अगला गाना जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है, जो कि फिल्म जब वी मेट से मैं चलाने जा रही हूँ आपके लिए। प्रदीप सलूजा और संगीता सलूजा जी की रिक्वेस्ट आई है जनकपुरी नई दिल्ली से। और साथ ही साथ कमाल की बात यह है कि जैद और हुदा की जो रिक्वेस्ट है वो भी सेम है जब वी मेट से, यही ब्यूटीफुल ट्रैक की। गाजियाबाद यूपी से लिख रहे हैं, तो दो नहीं चार लोगों के मन का गाना है ये। इसको एंजॉय कीजिए और आई एम श्योर कि हमारी जो बड़ी तादाद होगी जो लिसनर्स हमें सुन रहे हैं उनको भी ये गाना बहुत पसंद आएगा, मोहित चौहान की आवाज़ में फ्रॉम द मूवी जब वी मेट।

वेल, इसी ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ ही एक और गाने की रिक्वेस्ट आई है अंशी शर्मा की हस्तिनापुर मेरठ से, और ये जो गाना है जो इन्हें पसंद है वो है तुमसे मिलना बातें करना। ये गाना हमें भी पसंद है और ये गाना बहुत सारे लोगों को और पसंद है।

वेल तो आप सभी को एक दूसरे से बात करना और स्पेशली हमसे बात करना और हमें आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है. तो ये ब्यूटीफुल ट्रैक था अंजी के लिए. और अब रंजीत का आया है मुकुंदपुर दिल्ली से, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक की रिक्वेस्ट आई है जो कि है पापा कहते हैं फिल्म से. गाने बहुत बहुत खूबसूरत है, इसे सुनिए आप और फिर अगले ही रिक्वेस्ट भेजाते हैं आपकी, प्ले करते हैं. 9868107070 इज द नंबर. आप से रिक्वेस्ट है कि ब्यूटीफुल सा कोई ट्रैक जो आपके मन में इस समय चल रहा हो वो हमें लिख के भेजें.

उनके गाने ऑन एयर हो सके, समय सीमा हमेशा बंधी होती है, इसलिए मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि जो भी गाना चलेगा उसको एंजॉय कीजिएगा, नाराजगी बिल्कुल मत जताइएगा। ऐसी बात नहीं कि मुझे आपके मैसेज नहीं पता चल रहा है या फिर मैं आपका मैसेज पढ़ नहीं पा रही हूँ, पढ़ पा रही हूँ, लेकिन उस गाने को मैं आपके लिए ढूंढ के ला रही हूँ, चला रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि आपके मन की बात पूरी हो जाए। तो थोड़ा सा धैर्य के साथ एंजॉय करते रहिए आप आकाशवाणी रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है मेरा वाला सॉन्ग, मैं हूँ आपके साथ सोनू भट्ट। एंड यस, ये तो मैं बताना भूल गई कि ये प्रमिला ने कहा है कर्नाटका से, ये मैसेज उनका है, ये पसंद उनकी है।

और इसी ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ ही होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से मेरे पास आए हैं कई सारे मैसेजेस और उन्हें लगता है कि मैं उनका गाना नहीं प्ले कर रही हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए, आपकी पसंद का गाना बिल्कुल चल चुका है बैकग्राउंड में, और इन लोगों के नाम मैं लेती हूँ। जयराम खोरवाल है, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, और उन्होंने बहुत सारे गानों की रिक्वेस्ट की थी, जिसमें से ये गाना मैं चुन के आपके लिए लेकर आई हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने इतने सारे गाने मुझे भेजे हैं। जब जब मौका मिलेगा हम सॉन्ग्स को प्ले करते रहेंगे। आप हमारे हर प्रोग्राम से जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए इंजॉय कीजिए आप ये वाला गाना, आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक प्रोग्राम चल रहा है। मेरा वाला सॉन्ग और ये जो गाना अब मैं चलाने जा रही हूँ वो गाना है मास्टर राधे श्याम शाक्या की तरफ से। गुड आफ्टरनून लिख रहे हैं और इनको एक गाना बहुत पसंद है, हिमलता की आवाज है, ये फिल्म है नदिया के पार, कौन दिशा में लेके चला रहे बटुआ। ये गाना बहुत वैसे भी बहुत पसंद है, सभी को पसंद है। और इस समय जो खास तौर पर अपनी वाहन को लेके इधर उधर जा रहे होंगे, किसी को लेके जा रहे होंगे ना, उनको भी बहुत

वेल, कुछ मैसेजेस ऐसे भी पहुंच रहे हैं जो कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून दोस्त, वेलकम बैक। सौरभ अनेजा लिख रहे हैं गाजियाबाद से, इन्होंने कहा दोस्त मेरी कोई चॉइस नहीं होती, मैं तो बस हर शो एंजॉय करता हूँ, हर गाना एंजॉय करता हूँ। क्या ब्यूटीफुल सी बात कही है इन्होंने। वेल, अब इसी के साथ अगली जो फरमाइश है वो अब चल पड़ी है। बीवी नंबर वन फिल्म से ये गाना है और इसको वो रिक्वेस्ट करने वाले हैं कांत से, मोहम्मद फुरकान। इन्होंने कई चॉइसेस दी थी, इन्होंने अपनी पसंद के गानों में भी बहुत सारी चॉइसेस ली थी, जिनमें से मैंने एक गाना चूज कर लिया है और ये गाना चल पड़ा है।

और इसी गाने के साथ साथ मैं बता दूं आपको कि जिला मुरादाबाद से भी हमें मैसेज आए हैं, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, और बहुत ही स्वीटली इन्होंने कहा है कि किसी भी गीत में हमें शामिल कर लीजिए, तो आप शामिल हो गए इस ब्यूटीफुल ट्रैक में।

वेल, एक और बहुत ही ब्यूटीफुल से ट्रैक की रिक्वेस्ट आई है हमारे पास और हम कह सकते हैं कि ये भी किसी खूबसूरत सी बगिया से ही आएगा ना। ये मेरठ कैंट से आया है, दिग्दर्शन और कविता गौर लिख रहे हैं, गांव है शुभापुर, और बहुत ही सारे गानों की रिक्वेस्ट में से एक बढ़िया सा गाना उनके लिए गदर फिल्म से, उन्होंने कहा मैं निकला हूं गड्डी लेके। वेल, मौसम भी बहुत अच्छा है, आप चाहें तो अपनी गाड़ी को ले जा निकाल कर ले जा सकते हैं और कहीं घूम आ सकते हैं।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप और बाहर मौसम बहुत अच्छा हो गया है और इसी के चलते हमारे पास लगातार एक रिक्वेस्ट है जो बनी हुई है, वो है आनंद विहार से। और उन्होंने कहा है कि क्या नाराजगी है कि बारिश के मौसम में भी बारिश का गाना नहीं चला रहे हैं। तो देखिए, बारिश का गाना आपकी पसंद का किशोरदा की आवाज में, रिमझिम गिरे सावन।

मेरा वाला सॉन्ग सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर, राहत और गजल की तरफ से बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रैक आप सभी के लिए। नेहतपुर बिजनौर यूपी से लिख रहे हैं, इन्होंने कहा कि ओल्ड आशिकी मूवी से कोई भी गाना सुनवा दीजिए। देखिए आशिकी हम पुरानी नहीं होती हैं, ये गाना आज भी उतना ही नया है कुमार सानू की आवाज में। सुनिए, एंजॉय कीजिए।

बिल्कुल, जैसे सांस की जरूरत होती है ना मौसीकी के लिए, संगीत बजाने के लिए, उसी तरह से सारे के सारे रिक्वेस्ट प्ले करने के लिए समय की जरूरत होती है, वक्त की जरूरत होती है, जो कि अब मेरे हाथों से लगभग लगभग फिसल के चला गया है। गोपाल आ गए हैं आपके लिए प्रोग्राम लेकर बिल्कुल स्टूडियो में, और अब आखिरी और अंतिम गाना जो है इसकी रिक्वेस्ट आई है हमारे दूर दराज में बैठे हुए हमारे एक बहुत ही ब्यूटीफुल से लिसनर की, जोया लिख रही है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से, जो कि हमें ऐप के जरिए सुन रही है। उनका कहना है कि बागबान का कोई भी एक गाना बजा दीजिए, तो एक ही गाना जो प्ले कर रही हूँ मैं, बहुत ही अच्छा सा गाना है, डांसिंग नंबर भी है और बहुत ही प्यारे तरीके से इसे फिल्माया गया, तो इसे इंजॉय कीजिए। और इसी के साथ ही साथ जितनों के गाने मैं प्ले कर पाई वो मेरे मुझे अप्रिशिएट कर दीजिएगा, और जिनके नहीं कर पाई वो बाकी सबके गानों के साथ इंजॉय कर लीजिएगा, नाराज मत होइएगा। फिर हमारी मुलाकात होगी, फिर आपकी बातों को हम सभी तक पहुंचाएंगे, और ये जो गानों का सिलसिला है, गीतों का और बातों का, ये तो 24/7 चलता रहेगा आकाशवाणी रेनबो पे। बने रहिए, इंजॉय करते रहिए, एंड थैंक यू आप मुझसे कनेक्टेड।

नमस्कार, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर दोपहर के 2 बज चुके हैं। प्रस्तुत हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड के स्पार्क एरेना में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में दोस्ती, वैल्यू और कमिटमेंट है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में

ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकी के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें ईरान के नेतृत्व से जुड़े व्यक्तियों और वित्तीय नेटवर्कों को निशाना बनाया गया है। खेल के मैदान से लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड की पहली पारी में एक विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: दिल्ली एनसीआर के आबो हवा में तैरती ध्वनि तरंगे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़ और देश भर में अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर आप हमें सुन रहे हैं। डीडीएच के माध्यम से भी हम आप तक पहुंचते हैं और साथ ही साथ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू कहीं भी कभी भी आप हमें सुन सकते हैं। घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में दोस्तों इस घड़ी वक्त हुआ है 2:03 और मैं हूं आपके साथ आपका मित्र आपका बंधु आपका सगा आपका दोस्त रेडियो का किशन का नया आरजे गोपाल लेकर आप ही का शो जिसे आप कहते हैं आशियाना। और आज आशियाना में हम बात करने वाले हैं पड़ोसियों की। क्या वास्तव में हर एक पड़ोसी जरूरी होता है? और कहीं ना कहीं एक भट्ट जो है चली चली करके जाने वाली थी लेकिन फिर भी स्टूडियो में अभी तक टिकी हुई है। गुड आफ्टरनून सोनू।
2: गुड आफ्टरनून।
1: और मेरा सवाल मेरे पहले पड़ोसी से है कि वास्तव में क्या हर एक पड़ोसी जरूरी होता है?
2: बिल्कुल, पड़ोसी बहुत जरूरी होते हैं। पड़ोसी आपका पहला रिश्तेदार होता है। आपकी खुशी हो चाहे आपकी गम हो, सबसे पहले जो ये खबर है ना पहुंचेगी आपके पड़ोसी होता है। और वो आते हैं और पड़ोसियों से इसलिए संबंध बनाए रखने के लिए हमारे घरों में सिखाया भी जाता है और हमेशा हमें अच्छे संबंध बनाए भी रखने चाहिए।
1: क्या बात, इस महाज्ञान के बाद मैं वापस लौटता हूँ दोस्तों और आपके लिए यहाँ पर पेशे खिदमत एक बेहतरीन वाला गाना। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि पड़ोसी वास्तव में जरूरी है या नहीं ये तो हम डिसाइड करेंगे द ड्यू कोर्स ऑफ द शो। लेकिन कहते हैं ना कि रिश्तेदार किस्मत से मिलते हैं लेकिन पड़ोसी जो है ना वो घर खरीदते ही फ्री में मिल जाते हैं। 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारे साथ बने रहिए और हम कोशिश करेंगे आज जानने की क्या वास्तव में हर एक पड़ोसी जरूरी होता है।

यही जानना चाहते हैं आपसे कि पड़ोसी होना वास्तव में दुखड़ा है या फिर एक खूबसूरत सी चहचहाट जो आपके आसपास रहती है। तो दैट्स वी नीड टू डिसाइड एट द एंड ऑफ द डे कि सैड वाला मेरे सामने वाली खिड़की बजना चाहिए या फिर हैप्पी वाला। मुझे लगता है शुरुआत तो हैप्पी मूड पे ही होनी चाहिए। किशोर कुमार की आवाज में पड़ोसन फिल्म का ये वाला गाना आपके लिए 102.6 FM पर आप सुन रहे हैं आशियाना रेडियो के किशन कन्हैया आरजे गोपाल के साथ।

102.6 MHz, आप सुन रहे हैं हमारे साथ आशियाना, जहां पर हम बात करें कि वास्तव में हर एक पड़ोसी जरूरी होता है। सीरियसली सोचिए ना कि अगर एक दिन सुबह चीनी खत्म हो जाए तो सबसे पहले किसकी याद आती है? पड़ोसी की। अगर घर की घंटी बजे और सामने कोई बोले भैया आपका ऑनलाइन पार्सल हमारे घर आ गया था, तो समझ जाइए कि भाई साहब अच्छे पड़ोसी ना किसी वरदान से कम नहीं होते। हाँ, कुछ पड़ोसी ऐसे भी होते हैं जो आपकी नई गाड़ी से पहले उसकी ईएमआई का हिसाब लगा लेते हैं, या फिर आपके घर अगर मेहमान आए हो तो उन्हें पता चल जाता कि भाई साहब कुल मिलाकर कितने लोग आए, क्या क्या बन रहा है घर में और कब जाएंगे। लेकिन ये सब अपनी जगह, सच तो ये है दोस्तों कि मुश्किल समय में सबसे पहले दरवाजा पड़ोसी ही खड़खड़ाता है। बिल्कुल, कहते ना हमारी टैगलाइन में कि पड़ोसी की निगाहें चोरों से बचाती है। लेकिन अगर पड़ोसी ना हो तो कहीं ना कहीं वैक्यूम जिंदगी में रहता है, ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए कोई भी इमरजेंसी हो, अचानक से तबीयत बिगड़ जाए या फिर बच्चों को कुछ देर के लिए संभालना हो, तो भाई साहब एक अच्छा पड़ोसी ना परिवार से कम नहीं होता। तो चलिए आज अपने पड़ोसी के साथ इस दीवार को थोड़ा सा कम करके मुस्कान की दीवार को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस मुस्कुराहट को हम जिंदा रखें और ये जो खैरियत है ना अपने पड़ोसी की वो पूछते रहे। 102.6 MHz पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे बताइए 9868107070 पर, बोले तो 9868107070। मेरा एकदम पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहा हूँ, अगले एक घंटे बोले तो 3 बजे तक मेरे पास रहेगा। और अगर आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं पड़ोसी को लेकर, अपने इनपुट्स, अपनी ओपिनियन, तो मुझे ज़रूर बताइए। बहरहाल अरिजीत सिंह साहब बता रहे हैं खैरियत फ्रॉम अ ब्यूटिफुल फिल्म छिछोरे।

102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में दोस्तों इस घड़ी वक्त हुआ है 2:14 यानी आपकी हमारी भाषा में सरले दोपहर के 2:15 होने को है और आप सुन रहे हैं हमारे साथ आशियाना। मैं हूं आपके साथ, आपका मित्र, आपका बंधु, आपका सखा, आपका दोस्त आरजे गोपाल। और हम आज बात कर रहे हैं दोस्तों कि वास्तव में क्या पड़ोसी जरूरी होता है। कहते हैं ना कि रिश्तेदार साल में एक दो बार मिलते हैं लेकिन पड़ोसी जो है रोज ही मिल जाते हैं। इसलिए रिश्तों की शुरुआत सबसे पहले पड़ोस से होती है। जरूरत के समय सबसे पहले जो दरवाजा खुलता है वो अक्सर पड़ोसी का ही होता है। और ऐसे में हमारे देश में चीनी, चाय पत्ती और धनिया शायद सबसे ज्यादा मुझे लगता है पड़ोस से ही आते जाते हैं। मजेदार बात तो यह कि कभी कभी लौटाने से पहले ही इनकी जरूरत वापस पड़ जाती है। लेकिन ये छोटी छोटी बातें पड़ोस में अपनापन भी बढ़ाती है। क्या वास्तव में आज की इस तेज दौड़ती भागती जिंदगी में जब फैमिलीज न्यूक्लियर होती जा रही है, आपको लगता है कि वो पड़ोस वाला जो अपनापन था, जो पड़ोस वाली मोहब्बत थी, खुलूस था, वो अभी भी बाकी है? मुझे बताइए 9868107070 पर। मैं हूं आपके साथ, आपका मित्र, आपका बंधु, आपका सखा, आपका दोस्त आरजे गोपाल। आपके लिए एक और बेहतरीन ट्रैक यहां पर लेकर नीरज श्रीधर की आवाज में। जो सबसे पहला ट्रैक मैंने बजाया था वो पड़ोसन से बजाया था, लेकिन अब हम आज के जमाने के रेडियो स्टेशन है, सो दिस इज फ्रॉम द फिल्म नई पड़ोसन।

वेलकम बैक जी 102.6 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी का सतरंगी रेडियो स्टेशन रेनबो सुन रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ वही आपका मित्र, आपका बंधु, आपका सखा, आपका दोस्त, जिसे सारा का सारा शहर रेडियो रोमियो के नाम से जानता है जी। और नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन वंस अगेन। अगर अभी आप जुड़े तो बता दूं कि हम आज बात करें कि वास्तव में क्या हर एक पड़ोसी जरूरी होता है। हर एक, अगेन आई थिंक इट्स अ सब्जेक्ट टू डिस्कशन, लेकिन क्या पड़ोसी वास्तव में जरूरी होता है नहीं होता है, इसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ज्यादातर रुझान हमारे पास आ रहे हैं इस समय मेरे व्हाट्सएप बोर्ड पर, वो कह रहे हैं कि हाँ जरूरी तो होता है। कुछ पड़ोसी तो भाभी या भैया के रूप में एकदम एनर्जी ड्रिंक की तरह होते हैं, बस कुछ देर बात कर ले तो सारा तनाव दूर। ये जो मुख्य विचार है, महान विचार है, ये डॉली से आ रहे हैं हमारे पास। साथ ही साथ करें कि नहीं, बिल्कुल जरूरी होते हैं ऑन अ सीरियस नोट आई मीन से। और ये वाला जो मैसेज हमारे पास आया है, ये मनोज सिंह जी का आया है, लाजवंती गार्डन दिल्ली से लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई साहब आपके पड़ोसी बहुत खुशनसीब होंगे। ये तो मुझे भी अपने पड़ोसियों से पूछना पड़ेगा बाय द वे, लेकिन हाँ इनका भी यही मानना है कि अच्छा पड़ोसी एक अच्छे रिश्तेदार की तरह ही होता है। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि रिश्तेदार से भी बेहतर होता है। दिस इज व्हाट आई फील, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशंस एट टाइम। जोया हमें ऑस्ट्रेलिया से कह रही है कि भैया एक बार मेरी बैटरी जो थी खराब हो गई थी, धक्का लगाया था मेरे पड़ोसी ने, कितनी बड़ी बात है सोचो, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में। एक्चुअली कोई भी देश हो, कोई भी रीजन हो दोस्तों, अगर आप आसपास बना के रखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके ही वो काम आता है। और हर छोटी छोटी बात पर यू नो बहस होना, इट रूइंस रिलेशनशिप एट टाइम्स एंड डजंट मेक सेंस, इजंट इट। और मुझे तो ऐसा भी लगता है दोस्तों कि पहले के मुकाबले ना अब जो पड़ोसी का जो एनवायरनमेंट होता था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, वो भी कम हो गया। पहले लोग शाम को चौपाल पर, छत पर या गली में मिल जाया करते थे, और बस क्या धमा चौकड़ी होती थी। जो चुगली गैंग होता था जो महिलाओं का, वो अलग से होता था। ताऊ जी जो है अपनी बातें कर रहे हैं, उनका है ना वो अपने एकदम चौपाल में बैठ कर, बच्चे दौड़ रहे इधर से उधर, और मज़ेदार जो एक्सरसाइज है, खेल है, वो हो रहा है दोस्तों। लेकिन अब मोबाइल हमारे पास आ गया, हम ये नहीं जानते कि बगल में बिल्डिंग में

0: बगल वाले अपार्टमेंट में कौन है, सब कुछ अगर आप देखें ना तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया है, मतलब हम पूरी तरह से सोशल है लेकिन वो भी एकदम अकेले बन के साथ है, डिजिटली सोशल हो रहे हैं हम, और कितना सही है आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, इसके बारे में भी मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। बहरहाल यहाँ पर एक और खूबसूरत ट्रैक मैं यहाँ बजाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। वैसे आपको बताऊँ, अजब लहर जो मैंने गाना बजाया था ना आपके लिए और मैंने कहा नहीं पड़ोसन, मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि ये आज के पड़ोसन वाला गाना था, हालांकि जो फिल्म है वो है ब्रेक के बाद, और मुझे लगता है कि जो अगला गाना मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो भी एक ब्रेक के बाद ही बजना चाहिए। तो चलिए एक बहुत ही छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और उसके बाद हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक नॉटी 90s से।
1: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
2: पता का चाय गजब का स्वाद।
0: सिर्फ और सिर्फ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, यह है आकाशवाणी का सतरंगी रेडियो स्टेशन।

102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप हमारे साथ सुन रहे हैं आशियाने, और मुझे लग रहा है कि आज मैं अपने पड़ोसियों के ख्याल में ज़्यादा हूँ और इस बात का फ़ायदा हमारा जो कंप्यूटर है ना वो उठा रहा है। ऐसा लग रहा है कि फिरकी ले रहा है हमसे। सपने फिल्म का गाना बजाना चाहते थे हम, लेकिन गाना बजा है ये और प्यार हो गया से। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ 1990s के कुछ और बेहतरीन ट्रैक मेरे पास हैं आपके लिए। बस आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, बैठे रहिए, टिके रहिए, चिपके रहिए और सुनते रहिए दिल से दिल तक, क्योंकि ये है आकाशवाणी का सतरंगी रेडियो स्टेशन, जहां पर हम आपको देते हैं हर पल की खबर और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट का ऐसा डोज कि आप कहोगे वाह जी मेरे लाल मजा आ गया। गोपाल कहते ना कि घर में क्या पक रहा है ये खुशबू पहले पड़ोसी को पता लगती है और बाद में हमको। और अच्छा पड़ोसी ना हमेशा वो होता है दोस्तों जो सिर्फ नमस्ते कहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो जरूरत पड़ने पर बिना कहे मदद के लिए आ जाए। और ऐसे मोहल्ले में एटलीस्ट कुछ ना कुछ पड़ोसी तो ऐसे होने ही चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा ताका झांकी जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती ऐसा मुझे लगता है। ये हमारे साथ तनुज जुड़े हैं और अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से कहते हैं कि भाई आज बारिश का मौसम है और असली पड़ोसी न गाँव में ही रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में ऐसा लगता नहीं कि किसी को किसी से कुछ भी लेना देना होता है। अगर थोड़ा बहुत पड़ोस कहीं बचा भी है तो वहीं कॉलोनीज में एक दो घर हुआ करते हैं और वही जो है आपस में अपनी कम्युनिटी बनाकर इस पड़ोस को बचाने की, इस पड़ोस की जो परंपरा है इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक इट मेक्स सेंस। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि जिम्मेदारी दोनों तरफ से होती है दोस्तों, और अपनी तरफ से तो एटलीस्ट हमें कोशिश करनी चाहिए। 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में इस घड़ी वक्त हुआ है 2:28, यानी आपकी हमारी भाषा में सरड़े दोपहर के 2:30 को है। लता दी की आवाज में एक और बहुत ही खूबसूरत गाना फिल्म दुश्मन से, एंड दिस टाइम आई एम श्योर आई एम 100% राइट। और ये गाना खास तौर से इसलिए क्योंकि पड़ोस में जब दुश्मनी हो जाना तो बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कोशिश कीजिए कि उस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।

102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी का सतरंगी रेडियो स्टेशन रेनबो। मैं आपके साथ आपका मित्र, आपका बंधु, आपका सखा, आपका दोस्त आरजे गोपाल। और आज हम बात करने की वास्तव में क्या एक पड़ोसी जरूरी होता है। तो देखो, कुल मिलाकर जो बॉटम लाइन है, कुल मिलाकर जो निष्कर्ष है वो तो ये कि पड़ोसी तो जरूरी है, लेकिन एक सीमा में अगर रहे तो बहुत अच्छा है। जरूरत से ज्यादा जो ताका झाकी है, जरूरत से ज्यादा इंटरफेरेंस होता है, वो कई बार आज की जनरेशन को खासतौर से पसंद नहीं आता। वैसे पसंद तो कभी भी किसी भी जनरेशन को नहीं आया, लेकिन समटाइम यू कॉम्प्रोमाइज। आज की जनरेशन कॉम्प्रोमाइज करने में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते, और इसलिए उनको लगता है कि भैया इससे अच्छा है दूर ही रहो। लेकिन इन दोनों के बीच का भी एक रास्ता होता है जिसे विन विन सिचुएशन कहते हैं दोस्तों। तो कोशिश कीजिए कि वो बैलेंस रिलेशनशिप जो है वो बनाई जाए अपने पड़ोसियों से, और कहीं ना कहीं उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो डिसाइड कर लिए जाएं कि भाई देखो इतने तक ठीक है, जब भी जरूरत पड़े तो हम आपके लिए खड़े हैं, लेकिन आप रोज आकर सोफे पे बैठ जाओ और कहें भाभी जी चाय बनाइए ना, दैट्स आई थिंक नॉट फेयर। और एट द सेम मॉर्निंग टाइम अगर आप देखें ना दोस्तों, तो बहुत जरूरी होता है कि जो भी आपके पड़ोसी हैं उनके साथ एक जो रिलेशनशिप है उसके अंदर इमोशंस जो हैं उसका कंटेंट बहुत बैलेंस होना चाहिए। वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत बात मैंने गहरी कही, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर ज़रूर सोचिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स आर ड्रिवन बाय इमोशंस। तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पर आप कह रहे हैं कि भैया बहुत ज़्यादा ताका झाकी, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, लेकिन एट द सेम पॉइंट इन टाइम जब जरूरत पड़े तो बिना किसी सवाल के, बिना किसी प्रश्न के आपकी मदद के लिए वो खड़े हो जाएं। तो ऐसे में आपको ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि वो जो लक्ष्मण रेखा है उसे कैसे खींचा जाए दोस्तों। हालांकि हर एक पड़ोस में एक ऐसा करेक्टर जरूर होता है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है, और एक खास नाम जो है वो दिया जाता है उस करेक्टर को। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके आस पड़ोस में क्या कोई वास्तव में एक ऐसा खास व्यक्ति, एक खास पड़ोसी है जिसको आपने बहुत ही स्पेशल नाम जो है वो दिया हुआ है। मैं ऑफ एयर सोनू से बात कर रहा था और सोनू ने मुझे कुछ नाम जरूर बताया, और मेरे पास भी ऐसा ही एक नाम है। मेरे पड़ोस में एक आंटी है और बहुत ही बढ़िया वाला नाम हमने उनका रखा है फॉर अ रीजन। तो आप भी मुझे जरूर बताइए अगर आपके आस पड़ोस में भी कोई ऐसा खास पड़ोसी आपका है, ऐसी शख्सियत है जो एकदम स्पेशल है और आपने बहुत ही स्पेशल वाला नाम जो है उनका रखा हुआ है। अभी मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, आपके साथ ही हूं और आपके लिए कुछ बेहतरीन गाने जो है वो बजा रहा हूं। ज्योति नूरन और अरिजीत सिंह साहब अब आपके लिए बहुत ही प्यारा वाला गाना गा रहे हैं, सही होनी। नॉटी 90s का फ्लेवर है दोस्तों, लेकिन आज के जमाने की धमक भी है इस गाने में। सुनते रहिए, सुनाते रहिए, स्टेशन ऑफ द नेशन बजाते रहिए। मैं आपके साथ आपका मित्र, आपका बंधु, आपका सखा, आपका दोस्त आरजे गोपाल। गुड आफ्टरनून, नमस्कार जी।

0: 102.6 मेगाहर्ट्ज़ जी, ये आकाशवाणी का सतरंगी रेडियो स्टेशन जहाँ पर आप हम जुड़ते हैं करने कुछ प्यार भरी बातें, कुछ ऐसी बातें जो हम सभी की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं, और कुछ बेहतरीन ट्रैक। शो है आशियाना, मैं हूँ आपके साथ, आपका मित्र, आपका बंधु, आपका सखा, आपका दोस्त आरजे गोपाल जी। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, दोपहरीपन आप सभी को। और घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में इस घड़ी वक्त हुआ है 2:43, यानी कि आपकी हमारी भाषा में सैटरडे दोपहर के 2:45 होने को है। अभी भी 15 मिनट का समय लगभग बाकी है हमारे पास दोस्तों। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की, हम 45 मिनट का सफ़र लगभग तय कर चुके हैं, और जो एड ब्रेक्स बजाए ना मैंने सिर्फ 10 सेकंड्स के। दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ द स्टेशन दोस्तों, जहां पर हम एंटरटेनमेंट का और इन्फॉर्मेशन का, बोले तो इन्फोटेनमेंट का पूरा ख्याल रखते हैं। कम से कम एड ब्रेक्स और ज़्यादा से ज़्यादा मनोरंजन, ये गारंटी है आकाशवाणी के सतरंगी रेडियो स्टेशन रेनबो के। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक और छोटे से ब्रेक का समय हो गया। जब मैं बोलता हूँ ना छोटा सा ब्रेक, ट्रस्ट मी, आई मीन इट। सिर्फ 90 सेकंड्स में, 1.5 मिनट में वापस लौट रहा हूँ मैं। बस आप कहीं जाएगा नहीं, रेडियो किसे बिल्कुल भी घुमाएगा नहीं, मैं बस यूं गया और यूं आया।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
4: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: जी, इसी के साथ 3:45 पूरे हो चुके हैं, यानी कि 2:45 बाद स्टूडियो क्लॉक। आप हमारे साथ सुन रहे हैं आशियाना, और हम बात कर रहे थे पड़ोसी, अच्छे पड़ोसी, और किस तरह से हम पड़ोसियों के साथ एक विन विन सिचुएशन के साथ बैलेंस रिलेशनशिप रख सकते हैं दोस्तों। और अब बारी है उस प्रश्न की जो मैंने आपसे पूछा कि भैया क्या कोई स्पेशल पड़ोसी है आपके आस पड़ोस में जो कि विशेष है, बहुत विशेष है, और आपको लगता है कि भाई इनका कोई विशेष नाम होना चाहिए और आपने उनका विशेष नाम रखा भी हुआ है। मैं ऑफ एयर सोनू से बात कर रहा था और सोनू मुझे बता रही थी कि उनके वहाँ पर एक पड़ोसन थी और उनका नाम उन्होंने CCTV रखा हुआ था, क्योंकि वो पूरे मोहल्ले पर नजर रखती थी, कौन कब जा रहा है, कब आ रहा है, किसके साथ जा रहा है, किसके साथ आ रहा है, एवरीथिंग इज राइट, रेडी टू यू नो यूज। इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो उनके पास हमेशा मिलेगी। अगर किसी को नहीं पता ना तो उनको जरूर पता होगा, कोई गुमशुदा तलाश की रिपोर्ट लिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बस पता लग जाता है आंटी के पास, जो बता देंगे इतने बजे निकला था और इन इन के साथ गया था, तो देखो वहीं होगा और मिल जाया करता था। साथ ही साथ मेरे मोहल्ले में भी एक पड़ोस में हमारे आंटी है और हम उन्हें सैटेलाइट कहते हैं, क्योंकि दुनिया भर की कोई भी खबर हो दोस्तों, मतलब

वो एक ऐसी आंटी है जो घर मोहल्ले की खबर से लेकर के इंटरनेशनल अफेयर तक किसी पर भी बात कर सकती है बेबाक अंदाज में। इसी के साथ डॉली है और ये कह रही कि हमारे पड़ोस में भी एक आंटी थी, भाभी जी थी, और वो उन्हें मेंढक के नाम से जानते थे उनके जो आस पड़ोस के लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको घूमने का शौक रहा होगा और वो बिल्कुल टिकती नहीं थी घर में बिल्कुल भी, इसलिए उन्हें ये विशेष नाम जो वो दिया गया। हंसी मजाक के तौर पर हमें इन तरह के इंसिडेंट्स को लेने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके बगैर भी पड़ोस जो है वो अधूरा है दोस्तों। अगर आपके पास इस तरह के खास पड़ोसी नहीं है ना, तो जो मसाला चाहिए ना रिलेशनशिप्स में, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि ज़रूरी है हम सब के लिए कि हमारे आसपास पड़ोसी होने चाहिए, एक बैलेंस रिलेशनशिप उनके साथ होना चाहिए, जब ज़रूरत पड़े वो खड़े हो जाए आपकी मदद के लिए, लेकिन ज़बरदस्ती का इंटरफेरेंस पसंद नहीं है और ना ही होना चाहिए। अलग अलग करेक्टर्स जो हैं, करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, वो हर एक पड़ोसी में होते हैं और हमें पूरी रिस्पेक्ट के साथ उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। भाई किसी को ज़्यादा बातें करने की आदत होती है, किसी को कम, किसी को भाई पूरी नज़र रखने की जिम्मेदारी उनको लगता है कि पूरे मोहल्ले की मेरी ही है, और वो कई बार लेते भी हैं। सेल्फ यू नो अनाउंस्ड लीडरशिप जो होती है ना, वो आपको पड़ोस में बहुत ज़्यादा मिलती है, ऐसा मैंने अक्सर देखा है। बहरहाल एक और ट्रैक यहाँ पर दोस्तों आपके लिए, 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं बजा रहा हूँ नॉडी 90s का एक और ट्रैक, सिर्फ और सिर्फ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, दिस टाइम सोनू निगम फॉर यू।

102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी का सतरंगी रेडियो स्टेशन रेनबो। मैं हूं आपके साथ आपका मित्र, आपका बंधु, आपका सखा, आपका दोस्त बोले तो दिल्ली दा सोना रंगीला मुंडा अजय गोपाल जी। और फिर एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और जब मैं बोलता हूं ना छोटा सा ब्रेक, आई मीन इट। बिल्कुल दोस्तों, बहुत लंबे लंबे एड ब्रेक्स नहीं हैं यहाँ पर, सिर्फ 30 सेकंड में वापस लौटूंगा, इसलिए कहीं जाएगा नहीं, रेडियो किसी बिल्कुल भी घुमाएगा नहीं, क्योंकि आई एम हैविंग अ सरप्राइज फॉर यू आफ्टर दिस ब्रेक।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: बिल्कुल जी, मेरे 30 सेकंड पूरे हो चुके और मैं वापस लौट चुका हूँ आपके पास लेकर आपका शो जिसे आप कहते हैं आशियाना, जहाँ पर आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया जो पड़ोसी हैं वो जिंदगी में कितना जरूरी होते हैं। और कुछ पड़ोसी की उम्र ना कसम से बता रहा हूँ 100 साल लंबी होती है। मैं जिन पड़ोसी की बात कर रहा था ना, उनका ऑफ एयर जब मैं था, जब गाना बज रहा था अभी पीछे, तो उनका फोन आया, बोली अरे बेटा आपने SIR कराया नहीं कराया, उत्थे बूथ थे लोग बैठे जल्दी जाओ। मैं समझ गया भाई साहब कि कराना जरूरी है। मैंने उन्हें बताया, आंटी जी मैंने बिल्कुल करा लिया, लेकिन दैट्स व्हाट द पावर ऑफ अ पड़ोसी। ट्रस्ट मी दोस्तों, कि ये छोटी छोटी चीजें जो कभी कभी हम भूल जाते हैं, इग्नोर कर जाते हैं या फिर हमारे जहन में नहीं आता, कोई ना कोई तो रिमाइंड कराने के लिए होना चाहिए। वो मेरे बहुत अच्छे पड़ोसी थे, उन्होंने मुझे रिमाइंड करा। ना आई एम नाउ योर नेबर एट द मोमेंट रिमाइंडिंग यू वंस अगेन, अगर आपने SIR अभी तक नहीं कराया तो आप अपना जो SIR का प्रोसेस है उसे जरूर पूरा कर लीजिए। और इस समय कोमल जमा स्टूडियो में आ चुके हैं। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। आज पड़ोसी की बातें करके एकदम नो दिल गार्डन गार्डन हो गया,
3: इसीलिए मैं भी स्टूडियो में आ गई हूँ कि मुझे भी अपने पड़ोसी के बारे में बहुत
2: अब मुझे मेरा पड़ोस बड़ा हरा भरा सा लग रहा है इस समय, बड़ा खाली था स्टूडियो एक घंटे से।
3: कहते हैं ना कि दूर के रिश्तेदारों से पास का पड़ोसी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जब भी कभी आपको किसी भी चीज की इमीडिएट जरूरत पड़ती है तो आपके आसपास अगर कोई होता है तो वो आपका एक अदद पड़ोसी होता है। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस मामले में गोपाल, कि मेरे आसपास जो है ना ऐसे बहुत सारे पड़ोसी हैं जिनसे जब भी मुझे कोई जरूरत पड़ती है, क्योंकि हालांकि मैं नई नई शिफ्ट हुई हूँ जहाँ पर अभी मैंने,
2: कभी आपने चीनी मांगी पड़ोसी से? अरे बहन जी कटोरी
3: क्योंकि अभी नए नए हम लोग घर में शिफ्ट हुए हैं तो बहुत सारी चीजें जो है उथल पुथल हैं, लेकिन मेरे पड़ोसी इतने अच्छे हैं ना, मेरे मांगने से पहले ही मेरे दरवाजे पर आ जाते हैं, किसी चीज की जरूरत है तो बताइए। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ये वाकई बहुत सही बात है कि आपके दूर के रिश्तेदार से आपका पास का पड़ोसी बहुत जरूरी है।
2: बहुत बढ़िया बात है आपने कही, और वास्तव में मुझे लगता है कोमल इसका क्रेडिट बहुत हद तक आपको भी जाना चाहिए, क्योंकि शुरुआत हमसे होती है। इफ वी आर गुड तो हमारे आसपास हमको सब कुछ अच्छा अच्छा सा लगता है, और इसीलिए अच्छे पड़ोसी हमारे आसपास होंगे, क्योंकि अगर आप अच्छे पड़ोसी की भूमिका निभा रहे हैं तो चलिए आज एक बहुत अच्छी सी इस सीख के साथ अपने पड़ोसी के साथ, अगर आपने अभी तक हाय नहीं बोला है तो आज बोल दीजिएगा, एक कप चाय साथ में पी जा सकती है इस वीकेंड पे। दोस्तों मैं बहरहाल अपनी टी ब्रेक पे जा रहा हूं और वापस लौटूंगा लेकर आपके लिए एक और खास टॉपिक 4 से 5 के बीच। बस आप कहीं जाएगा नहीं, रेडियो से बिल्कुल भी घुमाएगा नहीं। अभी आपके लिए अभिजीत साहब गा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत ट्रैक 1990s से। सुनते रहिए, सुनाते रहिए, स्टेशन ऑफ द नेशन बजाते रहिए।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान

0: नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
1: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
3: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नोगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहां 3628179308

0: 9154952314 और 8433452014 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देशभर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
3: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, इस क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में

0: देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रोपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में 1 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना विकेट गवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi departs for home after concluding landmark New Zealand visit. Says bilateral trade agreement between two countries will accelerate India's journey towards a developed nation. 15 Indians killed in a boat mishap in Vietnam. President, Vice President and Prime Minister express condolence. West Bengal government forms 9-member committee headed by a retired judge to examine draft bill of uniform civil code. Legendary singer S. Janki, known as Nightingale of South India, passes away. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 to 5 days. In FIFA World Cup, Norway to take on England, while defending champions Argentina to clash with Switzerland in quarterfinals. And Indian women's compound team clinches silver medal at Archery World Cup Stage 4 in Madrid. Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Prime Minister Modi held talks with his New Zealand counterpart Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है. भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है. हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है. हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है. पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे.
1: On the occasion, Prime Minister Luxon described India as a trusted friend, praised the contribution of the Indian community to New Zealand's progress, and appreciated Prime Minister Modi's leadership. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations. Referring to the 40-year gap since the last visit by an Indian Prime Minister, he said the next visit would not take so long.
2: 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है. ये मेरा सौभाग्य है. मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं. साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था.
1: Defence Minister Rajnath Singh today said that India is building a strong, self-reliant and future-ready defence force by strengthening both conventional defence capabilities and advanced technologies. He said future wars may employ artificial intelligence and other emerging technologies, but they will ultimately be won by national resolve, courageous soldiers and capable military power. Mr. Rajnath Singh was addressing the commissioning ceremony of the INS Mahendragiri, the 6th Project 17A Indigenous Stealth Frigate, into the Eastern Fleet at Vishakhapatnam. He said the commissioning marks another milestone in strengthening India's maritime power and indigenous defence capability. 15 Indian tourists were killed after a boat capsized near Vietnam's Phu Quoc Island today. The Embassy of India in Vietnam confirmed that the deceased include 13 men and 2 women. In a post on social media, the embassy shared the list of the victims, stating that the names were provided by the Vietnamese authorities. According to the embassy, 10 of the deceased were from Tamil Nadu, 3 from Andhra Pradesh and 2 from Kerala. The boat was carrying 36 people, including 32 Indian tourists, 3 crew members and 1 attendant. 21 people, including 17 passengers and 4 crew members, were rescued and admitted to hospitals. 2 survivors remain in critical condition and are receiving intensive medical care. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed condolence at the tragic accident. Expressing sadness at the boat accident, the president offered condolences to the grieving families and prayed for the speedy recovery of the injured. The Pradhan Mantri formalization of micro food processing enterprises scheme has crossed the milestone of sanctioning loans to more than 2 lakh micro food processing enterprises across the country. The scheme has leveraged project investments of over 20,300 crore rupees and generated nearly 11 lakh direct and indirect employment opportunities. Addressing a special event in New Delhi today, Union Minister for Food Processing Industries, Chirag Paswan, said the achievement is not merely a milestone to celebrate, but a strong foundation for the next phase of India's food processing growth story. Mr. Paswan also underlined that the participation of women entrepreneurs at nearly 44% of all beneficiaries reflects the true spirit of women-led development, a cornerstone of Vikasit Bharat. Union Railway and IT Minister Ashwini Vaishnav today announced plans to develop Hyderabad as a major high-speed rail hub with proposed bullet train corridors linking the city to Pune, Chennai and Bengaluru. Speaking at an industry event in Hyderabad, he said the high-speed rail network will significantly reduce travel time and strengthen connectivity among South India's major economic centres.
3: 3 high-speed bullet train corridors to Hyderabad to Telangana, which will totally change the landscape. If you see, from Pune to Hyderabad, from Hyderabad to Chennai, from Hyderabad to Bangalore, this will become a major game changer for entire region, and Hyderabad will become the high-speed hub. This will totally change the landscape. It will bring huge amount of development. The economies of this entire region will become fully integrated.
1: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. Here with us on the news at 9. The West Bengal government has formed a 9-member committee to examine the draft bill of a uniform civil code for the state. A notification has already been published in this regard. Justice retired Ranjana Prakash Desai will be the chairperson. Former Meghalaya Governor Tathagata Roy is one of the members of the committee. Legendary playback singer S. Janaki, fondly known as the Nightingale of the South, passed away at the age of 88 today in Mysuru, Karnataka, after battling age-related health issues. Spanning over 6 decades, her career saw her singing in nearly 48,000 songs in multiple languages, including Kannada, Tamil, Telugu, Malayalam and Hindi. She was the voice behind generations of film stars. She collaborated with legendary music directors like Ilayaraja, M.S. Vishwanathan, A.R. Rahman, among others. She is conferred with 33 state film awards and recipient of Padma Bhushan. Vice President C.P. Radhakrishnan has said that differences of opinion are natural in a democracy, but commitment to the constitution and public welfare must remain paramount. Addressing the inaugural session of the orientation and training program for members of the Bihar Legislative Assembly in Gayaji, Mr. Radhakrishnan called upon public representatives to accord the highest priority to democratic values, transparency and accountability towards the people. The chairman of the Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election, Member of Parliament P.P. Chaudhary, today said that holding simultaneous elections to the Lok Sabha and state assemblies would strengthen governance, reduce expenditure and benefit the country's economy. Addressing media persons in Goa, Mr. Chaudhary said the 41-member committee representing all major political parties is touring states to gather views from governments, political parties, constitutional experts, civil society and other stakeholders. Goa is the 9th state being visited by the committee. Union Ministry of Health and Family Welfare has launched the monthly webinar series on best practices under the National Health Mission. on the occasion of World Population Day 2026. Envisioned as a year-round knowledge-sharing platform, the initiative will bring together states and union territories to present successful innovations, exchange implementation experiences, and accelerate the adoption of evidence-based practices for strengthening healthcare delivery nationwide. Iran's Supreme Leader Ayatollah Mujtaba Khamenei today vowed to avenge the death of his father.

0: Talker Health Center te BP laga free check up treatment aro kal phal thakibo laga motop dise BP laga kunba sawal thakile toll free number 1-800-116-6660 call koribi
1: BP haribo desh jitibo
2: kuchu jankari NTEP bar dise
3: हेलो
4: राजेश जी मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ
3: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो दूसरे कमरे में जाइए अकेले आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं लंबे जाएंगे
5: 10 लाख दीजिए बच जाएंगे
3: सर इतने कहाँ से
5: एक लिंक भेजा है अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए बाकी बाद में
3: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं
4: अरे
3: काट दिया
6: पैनिक मत कीजिए पापा डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है ये सब फ्रॉड है
3: फ्रॉड
6: पुलिस बैंक आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे
7: आरबीआई कहता है
8: जानकार बनिए सतर्क रहिए
0: Hello, good evening, my dear friends, my lovely and awesome listeners. Apni khan sobke program ni swagat kori ase. Akashvani Kohima FM Chagban 103 MHz te. Apni khan laga host aur dost arjitam jan logo de. Well, my dear friends, aji purani filmi geet laga segment de apni khan sobke ekdom warm welcome once again extend kori di ase. And for the next about 24 minutes, we will travel back to the magical era of Hindi cinema. Kote unforgettable melodies, soulful voices, or timeless poetry rule the hearts of millions. Whether you are relaxing at home after a long day or just reminiscing about cherished memories, these evergreen songs are sure to bring a smile to your face tonight. So, my dear friends, sit back. Unwind and let the golden melodies take you on a beautiful musical journey. Let us begin with a song that celebrates the joy of living and the beauty of the present moment. Main zindagi ka saath nipa tha jala gaya. Hum dono film radiye se Mohammad Rafi laga awaste. Music this is Jaydeep. Lyrics Sahir. Hunikana enjoy Gravit, this philosophical classic was beautifully picturized on Devanand. Shahir Luthianvi's lyrics encourages us to accept life with optimism and leave worries behind. Hunikana enjoy Gravit, my dear friends.

0: कोयल से तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।